0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा जी ने। लिखते हैं,
2: मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता जी का, और उनके साथ साथ कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
2: आज ही हाथियों पर केंद्रित कार्यक्रम रात भर चिंघाड़ते रहे, बिलखते रहे सुना। कार्यक्रम इतना मार्मिक लगा कि पूरा कार्यक्रम एक टक सुनकर ही उठने वाले थे। और एक और संग्रहणीय जानकारी प्रदान करने वाला नदियों पर आधारित कार्यक्रम सुना और इसे एक बार फिर से सुनने की इच्छा बलवती हो गई। उम्मीद है आप जरूर सुनवाएंगे। धन्यवाद और आभार।
0: आपके संदेश के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। जी, हम प्रयास करेंगे जल्दी ही इसे दोबारा प्रसारित करने की। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया जी का।
0: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित कुमार जंघेल और शकुन कुमार जंघेल जी का।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: तो बड़ी श्रोताओं, पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की, तो हमारा पहला प्रश्न था कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह का नाम बताइए जहां मोटर गाड़ियों और मशीनों को हमेशा चालू या ऑन रखा जाता है और क्यों।
2: इसका उत्तर है साथियों, दुनिया की उस सबसे ठंडी जगह का नाम है ओम्याकोन। ये रूस के साइबेरिया में स्थित है। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि यदि मशीनों को चालू नहीं रखा जाए तो उनका ईंधन जम सकता है और दोबारा उन्हें चालू करना बहुत कठिन हो सकता है।
0: और हमारा दूसरा प्रश्न था आपसे कि दुनिया की सबसे पुरानी नाव कहाँ मिली है और यह कितने वर्ष पुरानी है।
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। दुनिया की सबसे पुरानी नाव नीदरलैंड्स में मिली है, जो लगभग 10,000 साल पुरानी है। इसकी आयु का अनुमान कार्बन डेटिंग तकनीक से लगाया गया है।
0: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि पुराने समय के युद्धों में जहाजों का अगला हिस्सा लोहे का और नुकीला हुआ करता था, क्यों।
2: पुराने समय में युद्धों में इस्तेमाल किए जाने वाले जहाजों का अगला हिस्सा नुकीले लोहे का इसलिए बना होता था कि इससे टक्कर मारकर शत्रु के जहाजों को डुबोया जा सके।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था मैरिनस कंपास या दिशा सूचक यंत्र की खोज से पहले नाविक किस प्रकार दिशा का अनुमान लगाते थे।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं। दिशा सूचक यंत्र की खोज से पहले नाविक ध्रुव तारे, सप्तऋषि और भोर के तारे को देखकर दिशा का अनुमान लगाते थे।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था आधुनिक जहाज किस ईंधन से चलते हैं।
2: इसका उत्तर है आधुनिक जहाज अधिकतर डीजल से चलते हैं, लेकिन कई जहाज नाभिकीय शक्ति से भी चलाए जाते हैं।
0: तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए।

0: 8800044055 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और आइए अब सुनते हैं हमारा मासिक संस्करण श्रोता संवाद। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से श्रोता संवाद के मासिक संस्करण में। आप सबके विशेष अनुरोध पर हम श्रोता संवाद के पिछले संस्करण का पुनर्प्रसारण कर रहे हैं। विषय है प्रवेशिकाएं। तो आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजेंद्र पाल। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर पाल।
2: आप सबको भी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम श्रोता संवाद से जुड़े रहने के लिए।
0: तो हमेशा की तरह आज भी मेरा प्रश्न होगा कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं।
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्रवेशिका।
0: जी,
2: इसे अंग्रेजी में प्राइमर कहते हैं।
0: जी, ये विषय मुझे लगता है कि अधिकांश श्रोताओं के लिए नया है।
2: जी,
0: तो इसके बारे में जानना सचमुच बहुत ही रोचक होगा। तो अब ये बताइए कि प्रवेशिका यानी प्राइमर किसे कहते हैं।
2: जी देखिए, प्राइमर अंग्रेजी का शब्द है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रवेशिका शब्द पर ध्यान देना होगा।
0: जी,
2: प्रवेशिका शब्द प्रवेश शब्द से आया है, जिसका अर्थ है प्रवेश करना यानी प्रारंभ करना। प्रवेशिका शब्द को शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि देखें तो प्रवेशिका उस प्रारंभिक पाठ्य पुस्तक को कहते हैं जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ना लिखना सीखने की शुरुआत कराई जाती है।
0: जी, तो यदि पढ़ना लिखना सीखने की शुरुआत की बात करें तो प्रवेशिका में या प्रारंभिक पुस्तक में किन बातों को बुनियादी तौर पर शामिल किया जाता है।
2: जी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्राइमर्स या प्रवेशिकाओं में सबसे पहले अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है। फिर अक्षरों से छोटे छोटे शब्द बनाना।
0: जी,
2: और जब बच्चे शब्द बनाना सीख जाते हैं तो उन्हें शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाना सिखाया जाता है।
0: जी बहुत सुंदर। तो ये तो हुई पढ़ना लिखना सिखाने की बात, लेकिन ये प्रक्रिया तो प्रारंभिक शिक्षण विधि में हमेशा से ही प्रयोग में लाई जाती रही है। इन दिनों सारे संचार माध्यमों में बड़ी चर्चा है कि NCERT द्वारा मातृभाषा में 121 प्रवेशिकाएं विकसित की गई हैं। इनके बारे में जरा हमें विस्तार से बताइए।
2: जी जरूर। तो इसे ठीक से समझने के लिए हमें बात करनी होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की शिक्षा के परिदृश्य में एक क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी कदम है।
0: जी,
2: ये सीखने की प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे परिवर्तनों की अनुशंसा करती है जो पहले कभी नहीं हुए।
0: जी,
2: इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुशंसा है शिक्षा में मातृभाषा और घरेलू भाषा को प्राथमिकता।
0: जी, शिक्षा में मातृभाषा और घरेलू भाषा को प्राथमिकता।
2: जी,
0: ये तो सचमुच आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस विषय पर क्या कहा गया है।
2: जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जहाँ तक संभव हो कक्षा 1 से लेकर कम से कम कक्षा 5 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या घरेलू भाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए।
0: जी,
2: इससे कक्षा 8 या उसके आगे भी ऐच्छिक तौर पर जारी रखा जा सकता है। इससे बच्चों को सीखने में आसानी होती है और वे शैक्षिक अवधारणाओं को आसानी से समझ पाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा को बहुभाषिक बनाने पर भी बहुत जोर देती है, यानी बच्चे को उसकी मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाएं सीखने के अवसर भी दिए जाएं। इन बातों के आधार पर यह महसूस किया गया कि भारत की विभिन्न भाषाओं मातृभाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं में भाषा कौशल को विकसित करने के लिए
0: जी
2: बाल वाटिकाओं में तत्काल प्रवेशिकाओं की जरूरत है।
0: जी,
2: इस विषय पर बहुत से शोध हुए और यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब शिक्षण में घरेलू भाषा या मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में सीखने वालों को अनुदेश दिए जाते हैं तब उनके सीखने के प्रतिफल बेहतर होते हैं।
0: जी,
2: इस बात को ध्यान में रखते हुए NCERT और भारतीय भाषा संस्थान मैसूरू ने देश की 121 भाषाओं में प्रवेशिकाएं विकसित की हैं।
0: जी बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है
2: जी,
0: कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में मातृभाषा में शिक्षण क्यों?

0: आवश्यक है?
1: यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के शब्दों में, अपनी भाषा और संस्कृति का ज्ञान आत्मनिर्भरता और विकास की दिशा में पहला कदम होता है। मातृभाषा में बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है, इसलिए वे प्रवेशिकाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार स्थानीय सामग्रियों को आधार बनाकर तैयार की गई हैं।
0: जी

0: राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार स्थानीय सामग्रियों को आधार बनाकर तैयार की गई हैं।
1: जी, आपने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की बात की,
0: जी
1: तो इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए कि ये प्रवेशिकाएं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं।
0: जी जरूर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में विशेष रूप से यह ध्यान में रखा गया है कि इन प्रवेशिकाओं में प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा, घरेलू भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षण के केंद्र में रखा जाए। उन्हें कहानी और खेल और गतिविधि आधारित बनाया जाए ताकि रुचिकर और मनोरंजक ढंग से भाषाओं को सीखा जा सके।
1: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या इन प्रवेशिकाओं में 3 से 8 वर्ष के बच्चों की बुनियादी शैक्षिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है?
0: जी बिल्कुल ध्यान रखा है। जैसे बच्चों के परिवेश को ध्यान में रखते हुए उन्हें ध्वनियों के द्वारा वर्णों के सही उच्चारण को सिखाना,
1: जी,
0: धारा प्रवाह ढंग से समझकर पढ़ने में मदद करना, शब्दावलियों का विकास और चित्र कथाओं के द्वारा भाषा के प्रति उनकी रुचि और समझ को विकसित करना।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या इन प्रवेशिकाओं में शिक्षकों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि वे पढ़ाने में इनका उपयोग कैसे करें?
0: जी हाँ, शिक्षकों को भी इसका प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि वे सिखाने के लिए स्थानीय परिवेश की प्रासंगिक सामग्रियों का उपयोग करें, वे भाषा सिखाने के लिए 5 चरणों का उपयोग करें।
1: जी, आपने 5 चरणों की बात की, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो 5 चरण क्या क्या हैं?
0: बिल्कुल। पहला चरण है ध्वनि। ध्वनि के माध्यम से वे वर्णों और शब्दों का उच्चारण समझाएं। दूसरे चरण में उन्हें शब्दों का निर्माण सिखाना है।
1: जी,
0: जब बच्चे शब्द सीख जाएं, तब उन्हें सरल वाक्य बनाना सिखाएं और अंत में उन्हें धारा प्रवाह ढंग से पढ़ने और लिखने का अभ्यास कराएं।
1: जी जी,
0: इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, प्रवेशिकाओं के बारे में इतनी सुंदर और उपयोगी जानकारी देने के लिए। श्रोताओं की ओर से आपको हमारा आभार। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, क्या कार्यक्रम के अंत में आप श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: जी जरूर। मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि अपनी घरेलू मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का अपने परिवार और क्षेत्र में अधिक से अधिक उपयोग करें और अपनी मातृभाषा गर्व से बोलें, क्योंकि इसी से हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान होती है।
1: जी,
0: एक कविता के माध्यम से इस संवाद को समाप्त करना चाहूँगा।
1: अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। जी जरूर जरूर।
0: कविता इस प्रकार से है। नन्हे बच्चों और बड़ों के ज्ञान द्वार पर खड़ी प्रवेशिका, अक्षर अक्षर बांटे मुस्कान, शिक्षा की है प्रथम शिक्षिका।
1: जी,
0: जिस भाषा में माँ ने पहला शब्द हमें सिखाया, उसी ध्वनि से जीवन ने अर्थ नया है पाया।
1: वाह वाह जी।
0: न उसमें बनावट है और न दिखावे का शोर, मातृभाषा की अरुणिमा में ही खिलती संस्कृति की भोर।
1: जी क्या बात है।
0: जो बोले अपनी मातृभाषा स्वयं को अधिक वो जानता, जड़ों से जुड़ा मानव ही तो ऊंचाइयों तक जाता है।
1: वाह।
0: आओ गर्व से बोले हम अपनी मिट्टी की भाषा, क्योंकि मातृभाषा में ही धड़कती अपने देश की आशा।
1: वाह क्या बात है। आओ गर्व से बोले हम अपनी मिट्टी की भाषा, क्योंकि मातृभाषा में ही धड़कती है अपने देश की आशा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने ये बड़ी बहुमूल्य जानकारी हमें दी।
0: धन्यवाद।
2: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट।

0: अभी आप सुन रहे थे उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम
1: कथक सम्राट बिरजू महाराज।
0: इस कार्यक्रम में भारत के महान कथक नर्तक बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा में उनके उल्लेखनीय योगदान की चर्चा की गई है। कार्यक्रम में उनका साक्षात्कार भी प्रस्तुत किया गया है।
1: पंडित बिरजू महाराज।

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहाँ तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था।
2: क्या बात,
3: क्या बात, पांवों में बिजली है।
2: वाह,
3: आओ भंगिमा तो देखो,
2: कितनी प्रतिभा,
3: कितनी प्रभावशाली,
2: अति सुंदर, अति सुंदर,
4: अति सुंदर,
2: ये कभी नहीं देखा।
0: बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था। उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
0: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
1: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
5: प्रणाम पिताजी।
6: जीते रहो बेटा बिरजू।

0: बेटा तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया, लेकिन
1: लेकिन क्या पिताजी?
0: बेटा कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
1: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं और मेरे चाचा शंभु महाराज और लच्छू महाराज।
0: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
1: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
0: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
1: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
0: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
1: जी पिताजी।
2: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
3: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे, आइए सुनते हैं।
4: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और ख़ासकर आपके घराने के बारे में। कैसे शुरुआत हुई?
5: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाहिद अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो वो खील बताशा जेब में पड़ा है और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ। फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें, अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
4: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
5: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था। अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा। तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँ घर की विद्या। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो। अम्मा कह ले मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें, करें अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
4: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप

0: शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक खास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीजों को?
1: अरे उनको बड़े मजे में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथे ही ताते ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तरथे ही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? हाँ खाते हैं। पूड़ी खाती हूँ? हाँ खाते हैं।
2: तो सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा, पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह, तो वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
0: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
3: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए। उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
4: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
3: जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
5: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम कथक सम्राट बिरजू महाराज। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
6: और मुझे यानी विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது NCERT தேசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி குழுமம் வழங்கிய விளம்பரதாரர் நிகழ்ச்சி.
9: நான் டாக்டர் ஆனந்த் விஜய், லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட். லிவரை எப்படி பாதுகாக்கிறது, முக்கிய 4 விஷயங்கள் மட்டும் பேச போறோம். முதல் திங், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை. ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு ஆரோக்கியமான உணவு தேவை. நல்ல உணவு, அதாவது அதிக புரட சத்துக்கள் இருக்கிற மாதிரியும் கம்மியான கொழுப்பும் கம்மியான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கிற உணவுகளும் ரெகுலரா எடுத்துக்கணும். ரெகுலரா ஒரு மினிமம் 10-15 மினிட்ஸ் ஆகுது எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். செகண்ட் திங் இஸ் ஆல்கஹால அண்ட் ஸ்மோக்கிங்க கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணிக்கங்க. தேர்ட் திங், டாக்டர்ஸ் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாம தேவையில்லாத மாத்திரைகள் எடுக்க வேண்டாம். 4வது, உடல் பருமன். வெயிட் போடாம கம்ஃபர்டபுளான ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா லிவர ஃபேட்டி லிவர் இல்லாம பாதுகாக்கலாம். கொலஸ்ட்ரால கண்ட்ரோலா வச்சுக்கோங்க, டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோலா வச்சுக்கோங்க. சோ லிவர பாதுகாப்போம், ஆரோக்கியமான வாழ்வை கடைபிடிப்போம்.